0: Mirchi. It's hot.
1: Number 10.

0: गुरु रंधावा के हिट फैक्ट्री से एक और चार्ट बस्टर केयर सिर्फ दो हफ्तों में टॉप 10 में आ गया है। और ऑनेस्टली अगर परफॉर्मर्स की बात चली है तो सनी देओल का नाम उस लिस्ट में हम कैसे ना लें। हाल ही में उनकी एक फिल्म इक्का का टीजर मैंने बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखा और उसमें सनी देओल को फिर से लॉयर के रूप में देखते ही मुझे एक बात समझ आ गई। अगर आप 2005 के बाद पैदा हुए हैं ना तो शायद तारीख पे तारीख आपके लिए सिर्फ एक मीम होगा। लेकिन मीम तो वो बाद में बना, पहले वो सिनेमा था। 34 साल पहले दामिनी नाम की एक फिल्म में सनी देओल ने एक अदालत के सीन को इतना आइकॉनिक बना दिया कि उसके डायलॉग्स आज भी लोग कोट करते हुए नहीं थकते।
1: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिलोट इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। मिलोट दो तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते हैं, धंधा।
0: आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सिर्फ तारीख पे तारीख ही नहीं, 2.5 किलो का हाथ भी इसी फिल्म की देन है। नाउ इक्का का टीजर उस याद को भी सल्यूट कर रहा है और तब समझ आता है कि कुछ परफॉर्मेंसेस फ्राइडे से संडे तक नहीं जीती, 3 दशक तक जिंदा रहती हैं और उनके डायलॉग्स 30 साल बाद भी हमारे दिल में जिंदा रहते हैं। और कुछ फिल्मों का सफर थिएटर्स में 30 दिन भी मुश्किल से कटता है। है जवानी तो इश्क होना है इज डाउन टू मे बी 1 or 2 शोज एट द सिनेमा हॉल्स, लेकिन उसका साउंड ट्रैक अभी भी लड़ रहा है, ये जंग लड़ रहा है। इस हफ्ते नंबर 9 पर ये है वाओ।
2: नंबर 9 वाओ।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 8

हैव नेवर केयर्ड अबाउट बॉक्स ऑफिस नंबर्स. मुझे सच में कभी फर्क नहीं पड़ा. अगर पड़ा होता तो पान सिंह तोमर, कहानी, तनु वेजमनु और क्वीन जैसी फिल्में मैं थिएटर्स देखने कभी नहीं जाता. बट 2026 में नंबर्स हैव स्टार्टेड मीनिंग समथिंग, राइट? कॉकटेल 2 ने अभी हाल फिलहाल ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. एक वक्त था जब ये बड़ी न्यूज हो सकती थी, आज ये बस एक नंबर लगता है. और शायद बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, हमने फिल्मों को देखना कम, उन्हें कंपेयर करना ज्यादा शुरू कर दिया है. एक तरफ धुरंधर जैसी इवेंट फिल्म्स हैं, जिन्हें देखना सिर्फ फिल्म देखना नहीं, एक कल्चरल मोमेंट बन जाता है.

0: गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर इज अ नंबर सिक्स, एक ऐसी फिल्म जो 3,000 करोड़ के फिगर्स टच कर रही है। एंड देन दूसरी तरफ वो फिल्में जो शायद ओपनिंग वीकेंड की हेडलाइंस ना जीतें, लेकिन वक्त जरूर जीत लेती हैं। सबसे बड़ा नुकसान कलेक्शंस का नहीं हुआ, उस बीच वाली फिल्म का हुआ। वो फिल्म जो ना फ्रेंचाइज थी, ना सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा थी, ना उसके पास 500 करोड़ का बजट था, बस एक ईमानदार कहानी होती थी उन फिल्मों में और उसे कहने का हौसला होता था। सच कहूं, मुझे हिंदी सिनेमा का वही चेहरा सबसे ज्यादा याद आता है, क्योंकि उसी ने हमें कुछ ऐसी फिल्में दी हैं जिन्हें हम बॉक्स ऑफिस से नहीं अपने दिल से याद रखते हैं। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग एक ऐसी फिल्म से है, दम लगा के हायशा अपॉन की आवाज में, दिस इज मोमो के धागे।
1: Special request song. Yeah.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 5। अच्छा

0: धुरंधर टू का आरी आरी जब जब सुनाई देता है कहीं भी, उसके साथ धूल मिट्टी और देसी स्वैगर की वो खुशबू भी साथ आती है। लेकिन बॉलीवुड की एक और पुरानी आदत है और उसे बॉलीवुड ने कभी छोड़ा ही नहीं, दुनिया भर की जुबानों से जो बे इंतहा इश्क है। कभी हम स्पेन चले जाते हैं,
1: tan de repente y da sentido toda mi vida con tu querer.
0: तो कभी हमारा रंग ही बेशरम हो जाता है।

कभी श्रीलंका की भाषा सिनेला में हम मन के सुन लेते हैं। और प्रीतम दा तो शायद इस गेम के सबसे बड़े प्लेयर हैं। रिमेम्बर तेरा होने लगाऊं?

अंग्रेजी लव्स इंडियन मेलोडी. फनीली इनफ बॉलीवुड कभी फॉरेन लैंग्वेज में गाने नहीं बनाता, वो सिर्फ हिंदी गानों को एक पासपोर्ट दे देता है. गाना चाहे स्पेन चले जाए, इटली घुमाए या फिर श्रीलंका से होकर निकले, दिल उसका हमेशा हिंदी में ही धड़कता है. और शायद इसलिए ये गाने फैशनेबल लगते हैं, ग्लोबल लगते हैं, लेकिन टोटली अपने लगते हैं. इस हफ्ते नंबर 3 पर कॉकटेल 2 का वो समर एंथम जिसमें इटली का रंग है और बॉलीवुड का दिल है. दिस इज राघव चैतन्य विद माशुका. नंबर 3.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: नंबर टू।

0: सिर्फ चार ही हफ्तों में ऊंचा लंबा कद हैज क्लाइम्ब टू नंबर टू। पुराना हुक, नई पैकेजिंग एंड मुझे आनंद राज आनंद साहब के लिए इतनी खुशी हो रही है। उन्होंने कुछ बड़ी फिल्में साइन की हैं एंड द मैन डिजर्व्स इट ऑल। और एक बार फिर हॉलीवुड ने साबित कर दिया है कि सीक्वल सिर्फ फिल्मों के नहीं होते, गाने भी दूसरी जिंदगी जी लेते हैं। लेकिन एक सीक्वल ऐसा भी आ रहा है जहां एक्साइटमेंट फिल्म से ज्यादा उसके म्यूजिक को लेकर है, आवारापन 2। और शायद उसकी वजह यह है कि आवारापन को कल्ट उसकी कहानी ने नहीं, उसके म्यूजिक ने बनाया था। दो गाने ऐसे आए थे जो कभी किसी की प्लेलिस्ट से बाहर ही नहीं निकल पाए।
1: तो फिर आओ मुझको सताओ।
0: And then the one that became a timeless heartbreak classic.

हर सीक्वल पहली फिल्म से बड़ा बनना चाहती है, लेकिन आवारापन 2 को सिर्फ एक चीज मैच करनी है, अपनी वो साउंडट्रैक। और यकीन मानिए, वो एवरेस्ट चढ़ने जैसा चैलेंज है, क्योंकि कुछ एल्बम्स सिर्फ हिट नहीं होती, वो एक जेनरेशन की यादों में परमानेंटली डाउनलोड हो जाती हैं। अगर आवारापन 2 ने वही एहसास फिर से जिंदा कर दिया तो मिलेनियल्स सिर्फ टिकट्स नहीं खरीदेंगे, वो अपनी यादें दोबारा जीने जाएंगे। लेकिन फिलहाल पिछले 20 हफ्तों से यादें नहीं, हिस्ट्री लिख रहा है एक और साउंडट्रैक। 20 हफ्ते ऑफ बीइंग द अनडिस्प्यूटेड नंबर वन, रील से लेकर शादियों तक इंडिया का नंबर वन गाना। जैस्मिन सैंडलर्स, मधुबंती बागची शरारत करने वाले हैं फिर से। नंबर वन।

0: इतने गाने, लेकिन इनमें से कितने अगले हफ्ते तक रह पाएंगे और कितने सालों बाद भी साथ रह जाएंगे। इस सफर का हिसाब किताब हम ही रखते हैं, लेकिन इस बार का हिसाब होता है खत्म। शरारत कंटिन्यूज टू बी द नंबर वन सॉन्ग। मिर्ची टॉप 20 विल बी बैक अगेन विद अनदर एपिसोड। तो अगली बार तक सिरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Michi. It's hot.

0: हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैन हैटन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी।
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: Mirchi, it's hot.
1: Oh God, one more.

माइंडेड। अरे मेरी जैसे डांस

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है टू सेट द पॉप क्लॉक ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट गाने हैं, उसमें एक नई एंट्री है। हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना होने वाला है, अ स्पेशल स्पॉटलाइट, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे उतरा है, शुरुआत ही इस हफ्ते के एक धमाकेदार गाने के साथ हो रही है, साडी सुन बाय हर्ष नुसी। हर्ष नुसी एंड दीप क्लेयर की लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विस यादव। गाना कास्टिंग बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। साडी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद गाना नंबर 9 पर इस अनीश सरकार हृदय का गाना उड़ी उड़ी, जो पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे ड्रॉप हुआ है, चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक Only on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 10.
2: How chup

0: This one is such a fun song. गाने का नाम है उड़ी उड़ी by अनीश सरकार. हृदय पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके this week on गाना नंबर 9. इस काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो इस काउंटडाउन का सबसे सीनियर सिटीजन है.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kaneka. Connect with me Instagram par jao. Mujhe follow kare. Mera handle is @RJKaneka. Follow karna bilkul free hai. @RJKaneka par koi gaane suggest karne hai, koi baatein batani hai, bindaas aake hit me up. Jo agle wala gaana hai, usse is countdown pe pure 23 hafte ho chuke hain. It's a Coke Studio Bharat song. Jitna khoobsurat ye gaana hai, उतनी ही खूबसूरत इस गाने तक पहुंचने की जर्नी है. आप सोच के देखिए, एक आर्टिस्ट जो सिर्फ अपने बेडरूम में गिटार के साथ कुछ लोगों के लिए गाने लिखता है, बनाता है, वो अपनी जॉब करता है, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई रियलिटी शो स्टार नहीं, कोई बड़ा ग्रैंड लॉन्च नहीं, सिर्फ यूट्यूब के जरिए अपने खुद के लिखे गाने अपनी ऑडियंस को सुनाता है. उसकी ऑडियंस में 5 से 10 लोग जुड़े, 10 से 50, 50 से 100, ऐसे करते करते वो एक दिन कोक स्टूडियो भारत का सबसे बड़ा गाना बनाता है. आई एम टॉकिंग अनूप जैन एंड उनकी जर्नी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वंस दैट वी हैव सीन इन इंडी पॉप म्यूजिक. बट व्हाट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग जो अनूप जैन का है, इसमें ना किसी ने भी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की कि जी हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है तो आप ऐसे बड़ा ड्रामेटिक गाना बनाओ. प्लेटफॉर्म ने आर्टिस्ट को नहीं बदला बल्कि उनकी दुनिया में वो खुद ढल गए और इसीलिए शायद ये जो गाना आने वाला है वो इतना स्पेशल लगता है. कोक स्टूडियो को हम अक्सर फोक कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के फ्यूजन से जानते हैं, लेकिन अनूप जैन का गाना जिसका नाम है अर्ज किया है, दैट्स मोर देन अ फ्यूजन, इट्स अ लिटरेरी फ्यूजन, जहां उर्दू शायरी मिलती है कंटेम्प्रेरी पॉप सॉन्ग राइटिंग से. एंड अनूप जैन इज द किंग ऑफ पॉप सॉन्ग राइटिंग. एंड आई स्वेयर ये गाना इस बात का इतना बड़ा प्रूफ है दैट आज इंडिया का इंडिपेंडेंट म्यूजिक अपने आप में इतना मच्योर, इतना इंडिपेंडेंट हो गया इन रियल सेंस दैट बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स लाइक कोक स्टूडियो भारत ना कि सिर्फ उसे पहचान रहे हैं, उसको जगह दे रहे हैं और उसको बिल्कुल भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा हमारे हिसाब से. दैट्स व्हाई दिस सॉन्ग साउंड्स सो इनक्रेडिबल, बिकॉज इस गाने के जरिए अनूप जैन हर उस आर्टिस्ट के दिल की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार ये गाना 6 हफ्ते नंबर 1 पे भी रहा है. पिछले हफ्ते 10 पर आ गया था लेकिन फिर से 2 पोजीशंस ऊपर जंप करके अनूप जैन की आवाज में गाने का नाम है अर्ज किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 8. You are listening to Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanaka. Enjoy.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट
0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 6
2: जुदा

0: The one and only Diljit Dosanjh, resident dealer of superhit songs, पिछले हफ्ते से तीन पोजीशन नीचे ड्रॉप होके उनका गाना डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसे पहले एक नई नवेली एंट्री हुई जसलीन रॉयल का गाना इनाम, जिसने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, स्वागत है आपका. This is the Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है कनिका. Connect with me Instagram पर जाओ. मेरा handle is @RJKanika. This show is all about the hottest pop music of the week. And now it's time for us to shine spotlight on our indie pick of the week. And आज का गाना spotlight is. गाने का नाम है रोज रोज बाय द येलो डायरी फीचरिंग शिल्पा राव, जो साल 2021 में रिलीज हुआ था. आज साल 2024 में हमें रोज रोज आदत है इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन में बड़े बड़े कोलैबोरेशंस देखने की, लेकिन 6 साल पहले 5 साल पहले इट वाजंट लाइक सच अ रेगुलर डील, एंड दैट्स व्हाई दिस सॉन्ग स्टैंड्स आउट. एक वक्त था जब इंडियन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का सपना था कि बस उनका गाना किसी फिल्म तक पहुंच जाए, लेकिन 2019-2020 के दौर से वो उल्टा होना शुरू हुआ था जब फिल्मों के बड़े प्लेबैक सिंगर्स इंडिपेंडेंट म्यूजिक के मीटिंग पॉइंट पे आने लग गए. एंड देन दिस सॉन्ग वॉज अ एब्सोल्युटली जेनरेशनल रेवोल्यूशनरी song, cause एक तरफ है येलो डायरी, one of the best indie pop bands that we have seen. मुंबई से उन्होंने अपने बैंड की शुरुआत करी, कोई ओवरनाइट वायरल एक्ट नहीं है. सॉन्ग टू सॉन्ग, गिग्स टू गिग्स, कॉलेज फेस्टिवल, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उन्होंने अपनी ऑडियंस बनाई. राजन बत्रा, उनकी राइटिंग, उनकी ऑल्टरनेटिव पॉप साउंड हमेशा उन लोगों के साथ कनेक्ट करती है जो लिरिक्स के जरिए गानों में अपनी कहानी ढूंढते हैं. एंड देन दिस सॉन्ग है शिल्पा राव. शिल्पा राव हु इज सिनोनिमस फॉर बिग स्क्रीन सॉन्ग्स लाइक खुदा जाने चलिया, और उन्होंने इस गाने को अच्छे से बहुत ज्यादा अच्छा बना दिया. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए फॉर दिस हार्ट ब्रेक सॉन्ग, जहाँ एक अजीब सी खामोशी के बारे में बात हो रही है, जहाँ कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है, बातें हो रही हैं पर असली बातें होनी बंद हो गई है. येलो डायरी का गाना फीचरिंग शिल्पा राव, दिस इज रोज रोज ऑन अ गाना स्पॉटलाइट दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

Dude, this is the song जिसकी वजह से राजन बत्रा मेरे absolute top favorite vocalist बन गए थे. What a voice, goosebumps आ जाते हैं उनकी गाने के थ्रू. जो feelings बयां करना जा रहे हैं ना, वो into 10 times feel होती हैं. राजन बत्रा की आवाज, येलो डायरीज का गाना featuring शिल्पा राव, that was Rose Rose. अगर इस गाने को थोड़ा भी भूल गए थे तो वापस अपनी सारी playlist में add कर लीजिए. One of those pop songs जो उतने ही बड़े हुए जितने film के गाने होते हैं. Now countdown पे आगे बढ़ने से पहले, it's time for इंडी पॉप क्विज. एट आरजे कनिका पर आओ और मुझे बताओ दैट इंडिया का पहला रियलिटी स्टार कौन था जो एक म्यूजिशियन था. इंडियन आइडल जीते थे, फिर उनका एक गाना आया था जिसमें बारिश हो रही है. कौन थे वो आर्टिस्ट जो एक रियलिटी शो के जरिए मोहब्बतें लुटा रहे थे. एट आरजे कनिका पर जल्दी आके मुझे उनका नाम बताओ. काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हुए वी माइट फीचर हिज सॉन्ग. अभी अप नेक्स्ट काउंटडाउन का अगले वाला गाना इज अ संजू राठौर सॉन्ग. गाने का नाम है बैंगल्स. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 5.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 8।

हैव नेवर केयर्ड अबाउट बॉक्स ऑफिस नंबर्स. मुझे सच में कभी फर्क नहीं पड़ा. अगर पड़ा होता तो पान सिंह तोमर, कहानी, तनु वेजमनु और क्वीन जैसी फिल्में मैं थिएटर्स देखने कभी नहीं जाता. बट 2026 में नंबर्स हैव स्टार्टेड मीनिंग समथिंग, राइट? कॉकटेल 2 ने अभी हाल फिलहाल ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. एक वक्त था जब ये बड़ी न्यूज हो सकती थी, आज ये बस एक नंबर लगता है. और शायद बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, हमने फिल्मों को देखना कम, उन्हें कंपेयर करना ज्यादा शुरू कर दिया है. एक तरफ धुरंधर जैसी इवेंट फिल्म्स हैं जिन्हें देखना सिर्फ फिल्म देखना नहीं, एक कल्चरल मोमेंट बन जाता है.

0: गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर इज अ नंबर सिक्स, एक ऐसी फिल्म जो 3,000 करोड़ के फिगर्स टच कर रही है। एंड देन दूसरी तरफ वो फिल्में जो शायद ओपनिंग वीकेंड की हेडलाइंस ना जीतें, लेकिन वक्त जरूर जीत लेती हैं। सबसे बड़ा नुकसान कलेक्शंस का नहीं हुआ, उस बीच वाली फिल्म का हुआ। वो फिल्म जो ना फ्रेंचाइज थी, ना सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा थी, ना उसके पास 500 करोड़ का बजट था, बस एक ईमानदार कहानी होती थी उन फिल्मों में और उसे कहने का हौसला होता था। सच कहूं, मुझे हिंदी सिनेमा का वही चेहरा सबसे ज्यादा याद आता है, क्योंकि उसी ने हमें कुछ ऐसी फिल्में दी हैं जिन्हें हम बॉक्स ऑफिस से नहीं अपने दिल से याद रखते हैं। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग एक ऐसी फिल्म से है, दम लगा के हायशा अपॉन की आवाज में। दिस इज मोमो के धागे।
1: Special request song.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर टू

0: सिर्फ चार ही हफ्तों में ऊंचा लंबा कद हैज क्लाइम्ड टू नंबर टू। पुराना हुक, नई पैकेजिंग एंड मुझे आनंद राज आनंद साहब के लिए इतनी खुशी हो रही है। उन्होंने कुछ बड़ी फिल्में साइन की हैं एंड द मैन डिजर्व्स इट ऑल। और एक बार फिर बॉलीवुड ने साबित कर दिया है कि सीक्वल सिर्फ फिल्मों के नहीं होते, गाने भी दूसरी जिंदगी जी लेते हैं। लेकिन एक सीक्वल ऐसा भी आ रहा है जहां एक्साइटमेंट फिल्म से ज्यादा उसके म्यूजिक को लेकर है, आवारापन 2। और शायद उसकी वजह यह है कि आवारापन को कल्ट उसकी कहानी ने नहीं, उसके म्यूजिक ने बनाया था। दो गाने ऐसे आए थे जो कभी किसी की प्लेलिस्ट से बाहर ही नहीं निकल पाए।
1: तो फिर मुझको सताओ।
0: And then the one that became a timeless heartbreak classic.

हर सीक्वल पहली फिल्म से बड़ा बनना चाहती है, लेकिन आवारापन 2 को सिर्फ एक चीज मैच करनी है, अपनी वो साउंडट्रैक। और यकीन मानिए, वो एवरेस्ट चढ़ने जैसा चैलेंज है, क्योंकि कुछ एल्बम्स सिर्फ हिट नहीं होती, वो एक जेनरेशन की यादों में परमानेंटली डाउनलोड हो जाती हैं। अगर आवारापन 2 ने वही एहसास फिर से जिंदा कर दिया तो मिलेनियल्स सिर्फ टिकट्स नहीं खरीदेंगे, वो अपनी यादें दोबारा जीने जाएंगे। लेकिन फिलहाल पिछले 20 हफ्तों से यादें नहीं, हिस्ट्री लिख रहा है एक और साउंडट्रैक। 20 हफ्ते ऑफ बीइंग द अनडिस्प्यूटेड नंबर 1, रील से लेकर शादियों

0: इतने गाने, लेकिन इनमें से कितने अगले हफ्ते तक रह पाएंगे और कितने सालों बाद भी साथ रह जाएंगे, इस सफर का हिसाब किताब हम ही रखते हैं। लेकिन इस बार का हिसाब होता है खत्म। शरारत कंटिन्यूज टू बी द नंबर वन सॉन्ग। मिर्ची टॉप 20 विल बी बैक अगेन विद अनदर एपिसोड। तो अगली बार तक सिरे ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

0: बस तुम रहते हो।
1: झनक झनक झन टपक टपक टपक झनक खनक खन दिन धा दिन धा दिन धा दिन धा।

मुझको। मैं करता तुझे मैं डरता नहीं, किसी के पाप से मैं ज्यादा बात करता नहीं, तेरे आराम से आ लगे मैं लड़ता नहीं, लेकिन दिमाग खराब तू जरना कहीं तेरे दुकान पे पंगा ना लूं मेरे साथ, काफी हो गई बक बक बाकी बातें पीने बाद शुभ हुए बादशाह।

0: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड चलो पता करते हैं वेदर के क्या हाल चाल है। अभी फिलहाल टेम्परेचर है 71 डिग्री फ़ारेनहाइट, स्काइज आर क्लाउडी और हवा की वजह से फील हो रहा है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, यानी कि वेदर कह रहा है स्वेटर भी मत पहनो लेकिन टी शर्ट पे भी भरोसा मत करो। और हाँ, अगर किसी काम से ग्रोसरी रन के लिए अभी तुम बाहर निकल रहे हो तो अम्ब्रेला साथ में जरूर लेकर जाना, बिकॉज बरसात एक्सपेक्टेड है, वो भी 20 मिलीमीटर्स की इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। वैसे पिछले 24 घंटे भी कम नहीं थे, 21 मिलीमीटर्स की रेन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्लाउड्स क्लियरली आज ओवरटाइम करने वाले हैं। आज का हाई रहने वाला है 78 डिग्री फ़ारेनहाइट तक और लो जाएगा 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, एंड टेम्परेचर वुड फील बिटवीन 69 से 78 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। एंड थैंक्स टू ह्यूमिडिटी, विंड एंड सनशाइन, ये सब मिलकर अपना परफॉर्मेंस परफेक्टली दे रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फ्लड वॉच आज मंडे रात 8 बजे तक इन इफेक्ट है, सो अगर रोड्स पर एक्स्ट्रा वाटर दिखे तो हीरो बनने की जरूरत नहीं है, स्लो ड्राइव करो, सेफ ड्राइव करो, क्योंकि घर पर चाय तुम्हारा वेट कर रही है। वैसे अगर तुम वेदर से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो, बिफोर योर फर्स्ट कप ऑफ चाय और कॉफी देन हाई फाइव, वी आर ऑलरेडी फ्रेंड्स, और दोस्ती पक्की ऑनलाइन भी कर लो। इंस्टा और एक्स पर मुझे फॉलो कर लो, मिर्ची Priss is my handle name, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033 647244. फिलहाल stay tuned and stay hot.
1: I like the way you move right there.

गुड मॉर्निंग माय दोस्त, मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारी होस्ट। शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। और चलो एक मिनट के अंदर चलते हैं टाइम ट्रैवलिंग करने के लिए। सबसे पहले आज का दिन जो है वो है इंटरनेशनल मुआ डे, यानी कि किसिंग डे। मतलब एक वो दिन जब गुड मॉर्निंग टेक्स्ट के साथ इमोजी बजट ऑफिशियली डबल हो जाता है। लेकिन 6th of July सिर्फ प्यार का दिन नहीं है, बल्कि आज के दिन बहुत कुछ और भी घटा था। 1536 में सर थॉमस मोर को एग्जीक्यूट किया गया था। 1942 में एक यंग गर्ल एन फ्रैंक और उनकी फैमिली एम्स्टरडैम के एक सीक्रेट एनेक्स में छुप गई थी। उनकी डायरी आज भी दुनिया को होप और ह्यूमैनिटी का लेसन देती है। 1957 वाज अ ब्लॉकबस्टर ईयर। एल्थिया गिब्सन बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्लेयर टू विन द विंबलडन सिंगल्स टाइटल। और इसी साल एक चर्च फेट में दो यंग म्यूजिशियंस मिले, जॉन लेनन एंड पॉल मैकार्टनी। और यहाँ पर हेलो बोला गया था लेजेंडरी बैंड बीटल्स को। फास्ट फॉरवर्ड टू 2005, इंडिया और द यूएस ने सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट की जर्नी शुरू की। और 2006 में नाथुला पास 44 साल बाद ट्रेड के लिए दोबारा खुला। एंड दैट्स इट, वी कम टू द लास्ट स्टॉप ऑफ टाइम ट्रैवलिंग जर्नी। अब आगे आने वाले हैं मिर्चीदार बैंगर्स, मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ। मिर्ची मॉर्निंग सुन रहे हो तुम, फटाफट से मुझे फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: मिर्ची वॉच इट।
0: और फीफा वर्ल्ड कप ने कल रात लिटरली फुल पैसा वसूल ड्रामा दिखाया है। सबसे बड़ा शॉकर था, ब्राजील इज आउट। नॉर्वे ने ब्राजील को 2-1 से हरा दिया और हीरो बन गए अर्लिंग हालैंड। आज सुबह से उनके रील्स और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। 2 लेट गोल्स, मतलब बंदा लास्ट मिनट असाइनमेंट भी डिस्टिंक्शन से सबमिट करता है। ब्राजील के पास पहले लीड लेने का गोल्डन चांस था, लेकिन ब्रूनो गिमारेस पेनल्टी मिस कर गए। एंड में नेमार ने स्टॉपेज टाइम पेनल्टी कन्वर्ट की, लेकिन ऑनेस्टली वो बस स्कोर लाइन को थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल बना पाए। नॉर्वे अब हिस्ट्री बना चुका है अपने फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में, और ब्राजील 1990 के बाद पहली बार इतनी जल्दी टूर्नामेंट से बाहर हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेमार ने भी हिंट दिया कि शायद ये उनका नेशनल टीम के लिए लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है। और एक और ट्विस्ट है, यूएस स्ट्राइकर फॉलोरन बालोगुन का 1 मैच सस्पेंशन फीफा ने रिवर्स कर दिया है। मतलब रेड कार्ड के बाद भी वो बेल्जियम के अगेंस्ट इम्पोर्टेंट नॉकआउट मैच खेल सकेंगे। बस अब क्या है, सारे फुटबॉल फैंस जो है वो 2 साइड्स में डिवाइड हो चुके हैं। एक साइड बोल रही है फेयर डिसीजन है, और दूसरी साइड बोल रही है कि वार से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। वैसे तुम किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, फटाफट से मुझे डीएम करके बताओ। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल जलाते हैं मिर्ची, दे आर बैंगर्स फॉर यू। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है मेरी दोस्त वाली ट्राइब। मैं हूँ प्रिस्ला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, योर ओनली प्लेस है जहाँ पर तुम्हारी चाय ज्यादा गर्म है और गॉसिप इज गर्मा गर्म और आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स आर सुपर डुपर गर्म। अब वेदर यू आर स्टक इन ट्रैफिक या फिर स्प्रिंटिंग टू कैच द ट्रेन या फिर प्रिटेंडिंग टू वर्क फ्रॉम होम व्हाइल स्टिल हंटिंग फॉर मैचिंग सॉक्स, मैं तुम्हारे साथ रहने वाली अगले कुछ घंटों तक। कंसिडर मी योर मॉर्निंग बेस्टी, ऑफ कोर्स आई एम। यहाँ पर होगा ब्लॉकबस्टर म्यूजिक, फिल्मी मस्ती, फन कॉन्वर्सेशन, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, थोड़ी सी यहाँ वहाँ की बातें और ढेर सारी अपडेट्स तुम्हें मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ इसी शो पर जिसका नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। तो वॉल्यूम को करो फुल, स्माइल रखो ब्यूटीफुल और मेरे यानी कि प्रिसला के साथ चिपके रहो मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मुझसे कनेक्ट करना है तो इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। फिलहाल मिर्चीदार बैंगर्स का टाइम, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: कर गई चुल।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, ऑफ कोर्स दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब टाइम आ चुका है फॉर सबसे पहले एक इंटरव्यू में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल को सिर्फ एक पावरफुल एलाय के रूप में नहीं देखना चाहिए, और उन्होंने इंडिया का नाम लेते हुए इंडिया के सपोर्ट का भी जिक्र किया है। स्टेटमेंट ने इंटरनेशनल हेडलाइन जरूर बना दी है। नंबर टू पर रिपोर्ट्स के हिसाब से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी के फ्यूनरल प्रोसेशन को लेकर डिप्लोमेटिक डिसीजंस हुए हैं, और कुछ कंट्रीज ने अपनी रिप्रेजेंटेशन विदड्रॉ कर ली है। डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैव टेकन डिफरेंट पोजीशंस एंड डेवलपमेंट्स पर दुनिया की नजर बनी हुई है। एंड फाइनली नंबर थ्री पर, चाइना की यूबी टेक ने अनवेल किया है U1, एक AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट जो 20 से ज्यादा इमोशंस आइडेंटिफाई कर सकता है और ह्यूमन लाइक एक्सप्रेशंस भी दिखाता है। लॉन्च से पहले ही इसके 13,000 से ज्यादा ऑर्डर्स आ चुके हैं। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का थ्री फॉर दिस आवर। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करना है इंस्टाग्राम और एक्स पर तो मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग। और आज की स्टोरी सुनने के बाद तुम बोलोगे भाई ये प्रपोजल था या मिशन इम्पॉसिबल। न्यूयॉर्क की आइकॉनिक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर एक रशियन कपल एंजेला निकोलाओ और इवान ब्यूर्कस को अरेस्ट किया गया है बिकॉज दे allegedly climbed the building without any safety gears, all for a marriage proposal which went viral. और ये कोई first time thrill seekers नहीं है, ये दोनों दुनिया भर में extreme urban climbing के लिए famous है। इनकी love story पर Netflix पर एक documentary भी है, Skywalkers, a love story। मतलब यार आम लोग ना एक दूसरे के साथ relationship में सिर्फ Netflix का password share करते हैं और ये लोग जो है इनकी documentary Netflix पर है। वैसे प्यार काफी beautiful चीज होती है लेकिन please propose में सिर्फ हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, ब्लड प्रेशर नहीं और सेफ्टी कंसर्न्स नहीं। पब्लिक सेफ्टी और लॉज का ध्यान रखना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना जिससे प्यार करते हो उसको प्रपोज करना और उससे कहना विल यू मैरी मी, है ना। अच्छा सच बताओ, तुम्हारा ड्रीम प्रपोजल क्या होगा? बीच, बॉलीवुड स्टाइल, हॉलीवुड स्टाइल या फिर घर पर गर्मा गर्म चाय और पकौड़े के साथ तुम्हें पकौड़े के बीच में रिंग चाहिए? टेल मी व्हाट इज योर ड्रीम प्रपोजल। डीएम करो मुझे अभी के अभी, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS इंस्टाग्राम और एक्स पर, या फिर तुम मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033647244 पर। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

मॉर्निंग, मैं वो प्रिसिला तुम्हारे साथ में और सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग. सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू. अगर आज यानी कि 6 जुलाई को तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे, तो तुम गेस करो, तुम शेयर कर रहे हो अपना स्पेशल डे कौन कौन से सेलिब्रिटीज के साथ, इनफैक्ट लेजेंड्स के साथ. चलो कोई नहीं, मैं ही बता देती हूँ. बॉलीवुड के लाइव वायर रणवीर सिंह, जिनका एनर्जी लेवल इज 10,000. हॉलीवुड के एक्शन किंग सिल्वेस्टर स्टेलोन, जो हमें सिखाते हैं कि लाइफ नॉक्स यू डाउन बट यू ऑलवेज गेट बैक अप. और कॉमेडी के पावर हाउस केविन हार्ट, प्रूफ कि हाइट नहीं पंच लाइंस बड़ी होनी चाहिए. हिप हॉप आइकॉन 50 सेंट, जिनका नाम सुनते ही प्लेलिस्ट ऑटोमेटिकली शफल हो जाती है. फ्रेंच एक्ट्रेस एवा ग्रीन, लेजेंडरी मेक्सिकन आर्टिस्ट फ्रीडा कालो, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश एंड द 14th दलाई लामा, और 90s के नॉस्टैल्जिया की क्वीन टिया और तमीरा माउरी. मतलब कि आज अगर तुम्हारा भी हैप्पी वाला बर्थडे है ना, यू आर ऑफिशियली अ वेरी वेरी वेरी आइकॉनिक पर्सन. और ये याद रखना कि एज इज जस्ट लाइक योर वाईफाई पासवर्ड, हर साल थोड़ी सी लंबी हो जाती है बट होपफुली इट स्टिल वर्क्स. सो फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट मिर्ची मॉर्निंग्स एंड मी, विशिंग यू अ ईयर फुल ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस, अमेजिंग फूड, सरप्राइज वेकेशंस और इतनी प्रमोशंस की लिंक्डइन पर लिखते लिखते थक जाओ तुम. और अगर आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे नहीं है और किसी और का है, तुम उसे शाउट आउट देना चाहते हो, मुझे डीएम कर सकते हो. मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIPRIS. और केक नहीं, केक की फोटो ही भेज सकते हो तुम मुझे यहाँ पर. व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033 Cheaper, that's 9033647244. Filal, stay tuned and stay hot.

0: Hey there, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। रब सुनने वाले हो गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट।
1: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,200, $4,200 पर ट्रायंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस पिछले हफ्ते से अपवर्ड ट्रेंड ऊपर चले गए हैं, और इससे पहले और ऊपर जाए आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें, जिसमें 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड। आप आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी हिडन फी के, और 9 मंथ्स में इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं। आइए मिलके इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में विद द टीम ऑफ rajjewels.com। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू।
0: एंड देयर यू गो, गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट तो तुम्हें पता चल चुका है, लेकिन क्या तुम्हें पता है मुझसे इंस्टाग्राम और एक्स पे तुम बातें कर सकते हो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट करने के लिए 9033 मिर्ची इज द नंबर, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

मॉर्निंग गाइस, प्रिसिला हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और मेरे पास में है मिर्ची आवर का 3। सबसे पहले चाइना ने कंफर्म किया है कि उन्होंने साउथ पैसिफिक में एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है। चाइनीज ऑफिशियल्स ने कहा है कि मिसाइल डमी वॉरहेड कैरी कर रही थी और कंट्रीज से अपील की है कि इस डेवलपमेंट को ओवर इंटरप्रेट ना किया जाए। नेचुरली इस टेस्ट ने रीजन में स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस को फिर से स्पॉटलाइट में ला दिया है। नंबर 2 पर पाकिस्तान से एक हार्ट ब्रेकिंग अपडेट, कराची के गुल प्लाजा फायर जिसमें 72 लोगों की जान चली गई थी, उस केस में एक 11 ईयर ओल्ड बॉय ट्रायल फेस करने वाला है। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि अलेजेड फायर मैचस्टिक से शुरू हुई थी और इन्वेस्टिगेशन में मेजर फायर सेफ्टी लैप्सेस भी सामने आए हैं। इट्स अ ट्रेजिक रिमाइंडर दैट सेफ्टी रूल्स कभी भी ऑप्शनल नहीं होते हैं। एंड फाइनली नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड इंग्लैंड बाय 7 विकेट्स इन वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल्स एट लॉर्ड्स, सिक्योरिंग देयर 7th टाइटल इन द फॉर्मेट। द विन टुक ऑस्ट्रेलियाज कंबाइंड टैली अक्रॉस मेंस एंड वुमेन्स ODI एंड T20 वर्ल्ड कप्स टू 21, the most by any nation. Also, this is the 8th time that England have lost a Cricket World Cup final against Australia. And that's it for Mirchi Hour Ka 3. Main hoon Prisala, tumhare saath mein. Mujhse connect karo Insta aur X par. Mera handle name hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

0: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये मिर्ची मॉर्निंग्स। और चलो देखते हैं आज के दिन में हमारी किस्मत में क्या लिखा है।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि, आज थोड़ा सा लेस मेरी ही चलेगी और थोड़ा सा मोर टीम वर्क चलना चाहिए। ज्यादा पुश करोगे तो सामने वाला भी ब्रेक लगा देगा यार। कई बार लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि स्माइल से काम हो जाता है। लकी कलर फॉर यू इज ऑरेंज, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज अगर कोई बहुत मीठा बोल रहा है तो फ्री सैंपल्स की तरह ले लो, पूरा पैकेट मत खरीद लेना। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, दे आर शार्पर देन योर गूगल रिव्यूज टुडे। लकी कलर फॉर यू इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 28। जेमिनी यानी मिथुन राशि, न्यू आइडियाज एक्साइटिंग है बट टू गुड टू बी ट्रू वाली डील्स को डबल चेक करना, वॉलेट भी थैंक यू बोलेगा। लकी कलर फॉर यू इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 9। कैंसर यानी कर्क राशि, बिग प्लान्स आर ब्रूइंग, थोड़ा सा पेशेंस रखो, जल्दी शुरू करने की बजाय स्मार्ट टाइमिंग चूज करो, स्लो कुकर पर खाना और भी बेस्ट बनता है। लकी कलर फॉर यू इज एम्बर, लकी नंबर इज 31। लियो यानी कि सिंह राशि, कॉन्फिडेंस तो फुल बॉलीवुड हीरो लेवल है, बस वॉल्यूम थोड़ा सा कम रखो यार आज के दिन, ओवर कॉन्फिडेंस से बचोगे तो अप्लॉज और भी ज्यादा मिलेगी। लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 5। वर्गो यानी कन्या राशि, प्रॉब्लम को ब्लैंकेट के नीचे छुपाने से वो लॉन्ड्री नहीं बन जाती है। फेस इट टुडे, यू विल रियलाइज इट वाजंट एज स्कैरी एज योर इमेजिनेशन मेड इट। लकी कलर फॉर यू इज ग्रीन, लकी नंबर इज 18। And that's it for Mirchi Rashi Zone Part 1. Don't go anywhere. Part 2 is coming up right your way. But uske pehle Mirchi Dar Bangers ka time hai. Mera naam hai Priscilla. This is Mirchi Mornings. Fatafat se mujhe follow karo Insta aur X par. Mera handle name hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: नाम है प्रिसिला, वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स, जहां पर अब बारी है राशि जोन पार्ट टू की।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लिब्रा यानी तुला राशि, हर कॉलिंग ऑफिस बेस्टी नहीं होता, थोड़ा सा हेल्दी डिस्टेंस ही हेल्दी पीस ऑफ माइंड देगा। लकी कलर फॉर यू इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 22। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज चैलेंजेस आ सकते हैं बट यू गॉट दिस, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो और जब एक्शन लोगे तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ लेना। लकी कलर फॉर यू इज मस्टर्ड येलो, लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, सबके एडवाइस सुनना जरूरी नहीं है, कभी कभी अपना खुद का इंट्यूशन ही जीपीएस का काम करता है और उसका सिग्नल फुल बार्स पे होता है। लकी कलर फॉर यू इज चारकोल ग्रे, लकी नंबर इज 11। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आज सिर्फ वही प्रॉमिस करो जो निभा सकते हो, रेपुटेशन एक ग्लास की तरह होती है, टूटने में 2 सेकंड्स लगते हैं और बनाने में सालों लग जाते हैं। लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 11। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, अगर कोई अचानक बहुत ही फ्रेंडली बन रहा है तो बस इतना याद रखना, फ्री वाईफाई और फ्री एडवाइस दोनों केयरफुली यूज करते रहो, जेनरस रहो, गलेबल मत बनो। लकी कलर फॉर यू इज कोरल, लकी नंबर इज 26। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसेस यानी कि मीन, छोटी सी डिले या सेटबैक को ब्लॉकबस्टर ट्रेजेडी बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी डीप ब्रेथ्स लो, कल तुम खुद हंसो कि इतनी टेंशन किस बात की ले रहे थे। लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 17। एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन पार्ट टू। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

अरे वाह, क्या मस्त मॉर्निंग थी. और देखते ही देखते मॉर्निंग क्लोज टू आफ्टरनून आ चुकी है. मैं वो प्रिसिला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग. जरा मेरा रैप अप का टाइम हो चुका है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कोई लंबी कहानी सुनाकर जाती हूँ. अरे लंबी नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन की है. एक रियल्टर ने रिसेंटली शेयर किया है कि जब वो ऑस्ट्रेलिया में थे तो उन्हें करीब 3 बजे एक्टर अमिताभ बच्चन जी का मिस्ड कॉल आया और उसके बाद मैसेजेस आए. ऑब्वियसली पहले तो उनको लगा कि यार कोई स्पैम कॉल तो नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने कॉल बैक किया तो उनकी बात हुई अयोध्या में एक लैंड खरीदने की. और उनके हिसाब से अगले ही दिन पेमेंट ट्रांसफर हो गई और डील आगे बढ़ गई. मॉरल ऑफ द स्टोरी है, कभी कभी लाइफ का बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ना स्नूज बटन के दूसरी साइड होती है. लेकिन प्लीज इससे ये मत समझना कि आज से हर रात 3 बजे फोन कॉल जो आएगी वो एक्साइटिंग ही होगी. कभी कभी वो सिर्फ कोई दोस्त होता है जो पूछ रहा होता है, यार सो रहा था क्या. एंड इसी के साथ मेरी शिफ्ट यहाँ पर खत्म होती है. अभी मैं सोने नहीं जा रही हूँ, बल्कि और बचा हुआ काम करने जा रही हूँ. पर बोलने का काम मेरा खत्म हो चुका है, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय फ्रॉम मी. मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस सेम फ्रीक्वेंसी. तब तक के लिए यू बी गुड, खाओ पियो ऐश करो और मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रेस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

Mirchi. It's hot.

0: आज पता नहीं क्यों बैठे बैठे ना मुझे मेरी जिंदगी की बनाई गई पहली कॉफी बड़ी जोरों से याद आ रही है। वेल एक्चुअली वो कॉफी कॉफी नहीं थी, वो कॉफी तो एक्चुअली एक कॉमेडी शो बन गई थी।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. And हुआ ये था बॉस कि मैं ये कॉफी बना रही थी अपनी एक कजिन के लिए जो कि अमेरिका से आई थी। अब घर में छोटे होने का ये नुकसान तो होता ही है ना कि सारा काम आप ही को दे दिया जाता है। तो जब उन्होंने डिमांड की कि मुझे कॉफी पीने का दिल है तो बोल दिया गया कि सारा तुम जाओ, तुम कॉफी बनाकर लेकर आ जाना। मैंने कहा यार मुझे तो कॉफी बनानी आती नहीं है, आई हैव नेवर मेड अ कॉफी। तो एवरीबडी टोल्ड मी कि देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो काम करने की आदत थी, मैं चली गई कॉफी बनाने के लिए। और मैंने कॉफी बिल्कुल मम्मा के स्वाद अनुसार बनाई। जो कॉफी मम्मा हमारे लिए बना के दिया करती थी ना, वही कॉफी वैसी की वैसी कट कॉफी पेस्ट मैंने अपनी कजन के लिए भी बना दी। रिमेम्बर शी इज एन अमेरिकन कजन जो ब्लैक कॉफी पीने की आदी हुआ करती थी, उनके लिए मैंने दूध कॉफी बनाई थी। और कैसी वाली, वो जो चुटकी भर कॉफी डाला करती थी ना मम्मा हमारे लिए जब भी कॉफी बनाती थी, बिकॉज ये कॉफी तो बेबीज कॉफी थी ना, वैसी ही कॉफी मैंने अपनी कजन के लिए भी बनाई थी। और उन्होंने जैसे ही पहला सिप लिया और जो पेट पकड़ पकड़ के वो हंसी है, आज तक मेरी वो कॉफी ना एज अ जोक याद की जाती है। और आज तक जब भी हम सारे कजन इकट्ठा होते हैं ना, तो इस कॉफी के जिक्र के बिना हमारा इकट्ठा होना पूरा ही नहीं होता है। बट दिस ऑल्सो मेक्स मी थिंक अबाउट द फैक्ट कि कितने मासूम थे यार हम। एक चुटकी भर कॉफी जो हमारे दूध के अंदर डाल दी जाती थी, हम उसे समझते थे कि यही रियल कॉफी है। अब जब रियल वर्ल्ड में ब्लैक कॉफी पीने लग गए ना, तो समझ में आ रहा है कि यार ब्लैक कॉफी इज द रियल कॉफी, नॉट दैट चुटकी भर कॉफी पाउडर वाली कॉफी। बट हाँ एक बात तो जरूर है, वो चुटकी भर कॉफी पाउडर वाली जो कॉफी हुआ करती थी ना, बड़ी स्वाद हुआ करती थी, क्योंकि उस चुटकी भर कॉफी पाउडर के साथ हमारी चुटकी भर उम्र हुआ करती थी और चुटकी भर जिम्मेदारियां भी हुआ करती थी। ज्यादा से ज्यादा बैग पैक कर लेना, होमवर्क कंप्लीट कर लेना और सुबह टाइम पर उठ जाना, घर आकर यूनिफॉर्म चेंज कर लेना, और क्या ही जिम्मेदारी हुआ करती थी यार हमारी। लेकिन आज जो हम ब्लैक कॉफी पीने लग गए हैं, अडल्टिंग के फेज में आ गए हैं, इस उम्र में आने के बाद समझ में आ रहा है कि यार वो चुटकी भर कॉफी पाउडर वाले जमाने ही ज्यादा अच्छे थे। ये बड़ों वाली कॉफी पीने का क्या ही शौक चढ़ा यार जिंदगी को भी। वो कहते हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लिस, पता ही ना होता बड़े होने के बाद क्या क्या जिम्मेदारी लेनी पड़ती है तो कितना अच्छा होता, छोटे ही रह जाते और वो चुटकी भर कॉफी पाउडर वाली कॉफी से ही काम चलाते, नहीं क्या। चलो जी, नाउ विद दिस मिडडे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अगर मैं आपसे बोलूं कि गोलमाल सीरीज की पहली फिल्म का एक आइकॉनिक डायलॉग है जो हम आज तक अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं एंड इट हैज आल्सो टर्न इनटू अ मीम, तो कौन सा डायलॉग होगा वो?
0: मिर्ची पे 90s की आंखों का तारा।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड आज मिडडे मोहब्बत पर बॉलीवुड के 90s एंड अर्ली 2000 के एरा के कुछ आइकॉनिक डायलॉग्स जो हमारी जिंदगी में प्रिंट हो चुके हैं, छप चुके हैं, उनके बारे में डिस्कशन चल रहा है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है। और ये जो डायलॉग जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र ही किया है और आपको गैस करने के लिए कहा था, वेल दैट डायलॉग इज जल्दी बोल पनवेल निकलना है। वेल, ये जो डायलॉग था जो ओरिजिनली फिल्म में वसूली भाई यानी कि मुकेश तिवारी ने कहा था, आपको पता है इस डायलॉग के पीछे भी एक बड़ी फनी कहानी है। हुआ ये था कि जब सेट पर शूट चल रहा था तो मुकेश तिवारी ने जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उनसे पूछा कि उनका सीन कब लगने वाला है क्योंकि काफी डिले चल रहा था। तो वो बंदा जो है वो बार बार आके बताता कि सर अब, सर तब। फाइनली मुकेश तिवारी ने एक बात बोली कि यार जल्दी बता पनवेल निकलना है। एंड ही एक्चुअली मेंट इट बिकॉज उनको एक्चुअली पनवेल जाना था शूट कंप्लीट करके, तो वो चाह रहे थे कि भाई अपडेट मिले तो फिर मैं डिसाइड करूं कि पनवेल कितने बजे निकलना है। बस फिर क्या था, रोहित शेट्टी ओवरहर्ड द कॉन्वर्सेशन और उन्होंने मुकेश तिवारी को कहा कि बस सही है, बहुत सही है, ये डायलॉग अपन मूवी में रखते हैं। जाने रोहित शेट्टी को इस डायलॉग में क्या दिखा कि उन्हें समझ आ गया कि हम इंडियन ऑडियंस जो है वो पागल हो जाएगी इस डायलॉग को लेकर। एंड दिस डायलॉग वर्क्ड वंडर्स। इनफैक्ट वसूली भाई का जो कैरेक्टर है वो इस डायलॉग को लेकर और ज्यादा हिट हो गया कि जल्दी बोल पनवेल निकलना है। और अगर हमें भी कहीं लेट हो रहा होता है ना तो हम भी यही डायलॉग मार रहे होते कि जल्दी बोल पनवेल निकलना है। आप बताओ, क्या आप भी इस डायलॉग का कई हद तक इस्तेमाल करते हो अपनी जिंदगी में? डीएम करके बता सकते हो मुझे ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अभी के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: मिलेनियल्स की बात की जाए ना बॉस, तो हम हैं, बाकी पानी कम है, क्योंकि हम जो पिक्चरें देख देख कर बड़े हुए ना, उनके तो डायलॉग्स में भी दम है।
1: मिर्ची पे 90s की आंखों का तारा।
2: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिड्डे मोहब्बत पर मैंने सोचा कि क्यों ना 90s और अर्ली 2000 की उन मूवीज के फेमस डायलॉग्स के बारे में बात की जाए जिन्होंने आग लगा दी थी, तब भी और आज भी हमारी जिंदगी में वो ऐसे काम आते हैं कि अगर किसी के साथ वाइब चेक करनी होती है ना, तो बस एक डायलॉग काफी है बॉस, समझ में आ जाता है कि अगला जो है वो वाइब चेक पास कर चुका कि नहीं। जैसे अभी देखो, आपके और मेरे साथ वाइब चेक कर लेती हूँ, कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे। ये डायलॉग ऐसा डायलॉग है जो कि एक बार इस्तेमाल हुआ कुछ कुछ होता है मूवी के अंदर, लेकिन बार बार इस्तेमाल हुआ हमारी जिंदगी की मूवी के अंदर, सो मच सो दैट कि हर जगह हम इसका इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। और अगर कहीं किसी को कुछ बात समझानी होती है ना, तो बस ये डायलॉग बोल देते हैं। अगला अगर मिलेनियल है और वाइब चेक हो चुकी है, वो बिना आगे की एक्सप्लेनेशन के ना हमारी बात समझ जाएगा बॉस। लेकिन आपको पता है, करण जौहर ने ये डायलॉग अपनी पहली स्क्रीन प्ले में लिखा जब वो डायरेक्शन में डेब्यू कर रहे थे, और उन्हें इस बात का डर था कि कुछ कुछ सुनकर लोग हंस पड़ेंगे, लेकिन SRK का जज्बा, SRK की डायलॉग डिलीवरी, उन्होंने इस डायलॉग को ही आइकॉनिक बना दिया भाई। इस डायलॉग को शाहरुख खान ने बहुत ही कैजुअली लेकिन बड़ी ही गहराई के साथ बोला है। वो डिलीवरी इतनी नेचुरल लगी ना लोगों को कि लगा कि जैसे कि कोई रियल लाइफ लड़के ने अपनी फीलिंग्स एडमिट की हो किसी बंदी के सामने। बस फिर क्या था, तब से लेकर आज तक वी हैव फॉलन इन लव विद दिस डायलॉग। और हम 90s किड्स इस डायलॉग को क्रश को इम्प्रेस करने के लिए या फिर रिजेक्ट होने के बाद स्टेटस अपडेट देने का अनऑफिशियल तरीका बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एज इफ सामने वाला इंसान या तो टीना है या फिर अंजलि है। अब मैं नहीं बोल सकती कि आप समझोगे नहीं, क्योंकि आप मेरी बात समझ चुके हो। कमिंग अप मोर सच डायलॉग्स ऑन मिड डे मोहब्बत टुडे, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है सेनोरीटा।
0: मिर्ची पे 90s की आंखों का तारा।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। वेल, अगर कोई बहुत बड़ा गम जिंदगी में चल रहा है ना, तो उस बड़े से गम को छोटा करने का ये बहुत ही सुपर्ब आइडिया है। ये डायलॉग बोलो और वो गम अपने आप छोटा लगने लग जाता है, क्योंकि इस डायलॉग में कुछ ऐसी बात है कि है तो इसके अंदर काफी भारी दम, लेकिन जैसे ही इसको बोलते है ना, तो हमें लगता है हमारा गम कम। कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है सेनोरीटा। और आपको पता है कि ये जो आइकॉनिक डायलॉग है फ्रॉम द फिल्म DDLJ, इसके लिए कहा जाता है कि ये शाहरुख खान की स्क्रिप्ट में नहीं था, बल्कि उन्होंने इस डायलॉग को इम्प्रोवाइज किया था। शूटिंग के दौरान SRK और डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा मस्ती कर रहे थे और ये डायलॉग एक स्पॉन्टेनियस लाइन के तौर पर आया। आदित्य को ये इतना पसंद आया कि उन्होंने इसको फिल्म में ही रख लिया। बाद में ये लाइन इतनी हिट हुई कि शाहरुख खान का ट्रेडमार्क ही बन गई। आज भी जब शाहरुख खान किसी इंटरव्यू में ये लाइन कैजुअली बोलते है ना, तो लोग तालियां बजाना नहीं भूलते। और हाँ सेनोरीटा, आज अगर तुमने नाश्ते में समोसे के साथ मीठी चटनी की जगह हरी चटनी खा ली ना, तो चिंता मत करना, क्योंकि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं सेनोरीटा। कमिंग अप मोर सच आइकॉनिक डायलॉग्स फ्रॉम द 90s एंड अर्ली 2000s बॉलीवुड एरा। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: उदित नारायण की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म कोयला इज सम मैजिक. ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूशन राजेश रोशन का भी है बिकॉज ऑफ द रीजन कि म्यूजिक इस फिल्म का जो रहा है ना वो बहुत ही ब्रेथ टेकिंग है यार. जो नोट्स दिल को छू जाते हैं ना, और ये कोयला के सारे गानों के साथ है कि सारे के सारे गानों में कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसे जज्बात है कि जब सुनते हैं ना तो कानों में बस धुन पड़ने की देर है बॉस, दिल में कुछ कुछ होने लग जाता है. सेम इज विद दिस सॉन्ग. और इस गाने की मोहब्बत पर चार चांद लगा दिए इस गाने में शाहरुख खान की प्रेजेंस ने. ऑफ कोर्स कहां ही जाना था यार ये गाना. जब काउंटडाउन शोज में ये गाना आया करता था ना तो ये वो गाना हुआ करता था जिसको देखे बिना अगर मुझे बाथरूम भी जाना होता था ना तो भी मैं नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे पता होता था कि नंबर 5 पे ये गाना आने वाला है. भाई ये गाना देखने के बाद ही अपन जाएंगे जो जो काम करने के लिए जाना है.
1: सारा जमाना ए सारा का दीवाना.
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा. And now, निकालते हैं हमारे पिटारे में से एक और चीज, and that is मान ना मान करो गानों की पहचान. और यहाँ पर 90s या early 2000 के दो गानों को मिक्स करके मैं आपके लिए चला देती हूँ और आपको गेस करना होता है कि ये दो गाने आखिर है कौन से. तो आज का जो मिक्स है वो है कुछ यूं.

बस जी DM करो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और बता दो कि ये जो दो गाने कौन सी मूवी के हैं। और अभी के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हमारा दिल जब बात बात पे खुश हो जाता है ना, तो दिल को एक ही डायलॉग याद आता है, मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो खुश हुआ।
0: मिर्ची पे 90s की आंखों का तारा।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ये हमारे जीवन का सत्य है बॉस, कि आज जब हमारी सैलरी आ जाती है या फोन गिरते गिरते बच जाता है या फिर कभी ऐसा होता है कि मम्मा ने आलू के पराठे बना दियो, तो हम सब एक ही डायलॉग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन वेरियस सिचुएशंस जो छोटी छोटी खुशियां दे रही होती है हमें, कि मोगैम्बो खुश हुआ। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मोगैम्बो कितना खुश मिजाज आदमी था यार, बात बात पे खुश हो जाया करता था। हमें मोगैम्बो से काफी कुछ सीखना चाहिए बॉस, छोटी छोटी खुशियों को कैसे बड़ा करके सेलिब्रेट करना चाहिए। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू लर्न फ्रॉम मोगैम्बो। एंड वेल, ये जो डायलॉग था मिस्टर इंडिया में, ये लिखा था जावेद साहब ने, लेकिन किसे पता था कि ये इतनी आइकॉनिक लाइन बन जाएगी, ये डायलॉग खुद एक कैच फ्रेज बन जाएगा जिसे बच्चे, बूढ़े, मिमिक्री आर्टिस्ट और यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस तक इस्तेमाल करने लगेंगे। इनफैक्ट जब अमरीश पुरी साहब को ये रोल ऑफर किया गया था ना, तो वो थोड़े से स्केप्टिकल लगे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कॉस्ट्यूम पहना और डायलॉग पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही मजेदार है। इस डायलॉग के बाद अमरीश पुरी की जो पहचान एज अ विलन थी ना, उसने एक नई ऊंचाई छू ली थी और मोगैम्बो वाकई में खुश हो गया था। एंड विद दिस मोगैम्बो खुश हुआ, इस डायलॉग उस एरा का सबसे ज्यादा इमिटेट किया जाने वाला विलन डायलॉग बन गया था, एंड उतना ही फेमस मोगैम्बो भी हो गया था इसी के साथ साथ। आपको क्या लगता है कि इंसान को नॉर्मल बोरिंग रहना चाहिए या फिर बात बात पर मोगैम्बो बन जाना चाहिए और खुश होते जाना चाहिए? डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अगर राकेश रोशन ने इस डायलॉग के ऊपर कॉपीराइट्स ले लिए होते ना, तो ना जाने कितनी रॉयल्टी का पैसा मिल गया होता उनको।
0: मिर्ची पे 90s की आंखों का तारा।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And the dialogue that I'm talking about is from the film Karan Arjun. And of course, this goes without saying that this dialogue is मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये डायलॉग इस डायलॉग में जितना दर्द है ना, उतना ही हमने इस डायलॉग का मजाक उड़ाया भाई जिंदगी के अंदर। रूम में कोई एंटर होता नहीं है कि फौरन से बोल देता है कि मेरे करण अर्जुन आ गए क्या, या फिर कोई अगर एंटर हो जाता है तो उसे ही करण अर्जुन बना दिया जाता है कि अरे करण अर्जुन आ गए। ये करण और अर्जुन की एंट्री और ये करण और अर्जुन का इंतजार हमारी जिंदगी में कहां कहां नहीं हुआ है यार। और इस डायलॉग को हमने कहां इस्तेमाल नहीं किया है, सोशल मीडिया पर हो या रियल लाइफ में हो। दिस डायलॉग हैज ऑलवेज बीन आवर सहपाठी एंड क्लियरली दिस डायलॉग इज 90s के एरा का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग्स। सैलरी लेट आती हो तो भी हम यही कहते हैं कि करण अर्जुन आएंगे। पार्सल लेट आता हो तो भी हम यही कह रहे होते हैं कि करण अर्जुन आएंगे। और कहा तो ये भी जाता है कि इस डायलॉग को परफॉर्म करते करते राखी जी इतनी इंटेंस हो गई थी कि उनके खुद की आंखों में आंसू आ गए थे ये सोचते और कहते हुए कि उनके करण अर्जुन आएंगे। हालांकि वाकई में आई वुड से अगेन कि ये बड़ा ही हार्ट ब्रेकिंग सा डायलॉग है। सिचुएशन ही ऐसी होती है इस फिल्म के अंदर जहां जहां और जब जब ये डायलॉग इस्तेमाल किया गया। लेकिन हम भी तो कौन से सीधे लोग हैं भाई, हमारा तो फर्ज बनता है कि सीरियसनेस में कुछ ना कुछ मजाक ढूंढ लिया जाए, और वही हमने इस डायलॉग के साथ भी किया है। आपके हिसाब से 90s या अर्ली 2000 के बॉलीवुड के एरा में ऐसा कौन सा डायलॉग है जो आप मानते हो कि इज आइकॉनिक? DM करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: हमें पता हो या ना पता हो, ये बात तो रमेश बाबू को भी नहीं पता है, क्योंकि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू।
0: मिर्ची पे 90s की आंखों का तारा।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिडडे मोहब्बत पर 90s और अर्ली 2000 के बॉलीवुड के एरा के आइकॉनिक डायलॉग्स पर डिस्कशन हो रहा है। एंड दिस डायलॉग क्लियरली फिट्स इनटू द लिस्ट यार, बिकॉज इस डायलॉग के जिक्र के बिना तो बॉलीवुड का जिक्र भी अधूरा सा लगता है। फनी थिंग इज कि ओम शांति ओम पिक्चर के अंदर भी एक पिक्चर शूट हो रही थी जिसमें कि जो मेन लीड होती है वो ये डायलॉग बोल रही होती है, प्लेड बाय दीपिका पादुकोण ऑफ कोर्स। और अगर हमें लगा है कि यार ये डायलॉग में कुछ ज्यादा ही ड्रामा नहीं था, तो वो ड्रामा वाज मेंट टू बी लाइक दैट, बिकॉज फराह खान वांटेड कि वो 80s और 70s के एरा का जो ड्रामा होता है, मेलो ड्रामा जो होता है, वो चाहती थी कि इस डायलॉग के अंदर वो आकर पड़े। और वो हुआ भी, इतनी इंटेंसिटी के साथ दीपिका पादुकोण ने इस डायलॉग को बोला है। हालांकि जब वो एक्ट कर रही थी ना, तो मुझे कहीं पर भी हंसी नहीं आ रही थी। लाइक पर्सनली इफ आई टॉक अबाउट दिस परफॉर्मेंस, इस डायलॉग को लेकर इन पर्टिकुलर ऑफ दीपिका पादुकोण, सो आई फेल्ट कि यार काफी अच्छा इनएक्ट किया यार बंदी ने इस डायलॉग को। लेकिन हम है बाकी पानी कम है, इस डायलॉग को उठा के लेफ्ट राइट सेंटर जो मीम बना के पेश किया गया है। इनफैक्ट हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर भी ये डायलॉग कहाँ इस्तेमाल नहीं होता है। जहाँ किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही होती है, तो हम यही डायलॉग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ये डायलॉग तो यार HR के साथ भी अप्लाई होता है, जब वो हमारे इंक्रीमेंट की बात कर रहे होते हैं, तब उन्हें आटे दाल का भाव नहीं, सिंदूर की कीमत का भाव बताना पड़ता है। विच स्पीक्स अ लॉट, हाँ, क्योंकि जब एक इंसान की शादी हो जाती है तो खर्चे बढ़ जाते हैं। एंड वाकई में दिस इज समथिंग जो HR को पता होना चाहिए यार, कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो HR बाबू। एंड दिस क्लियरली स्पीक्स ऑफ द रियलिटी इन लाइफ कि यार देखो, सिंदूर जो है ना, उसका दाम पता करके ही शादी जैसी चीज में पड़ना चाहिए इंसान को। मुझे बहुत महंगा लगा, इसलिए मैंने अभी तक इस जोन में कदम नहीं रखा। आपका क्या हाल है, DM करके मुझे बता सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। और अभी के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता जी की आवाज में आए हाय, ये गाना दिल के तार बजा देता है। कैसेट के साइड बी का तीसरा गाना
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: हम आपके हैं कौन से, ये मौसम का जादू है मितवा। ये वो गाना है कि जहाँ कहीं कोई मौसम बन जाए तो यही गाना हमारी जुबान पर आए भाई। और इस गाने का पिक्चराइजेशन ओ माय माय, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। और मुझे ना 90s के गानों में ना ये बात बड़ी अच्छी लगा करती थी कि न जाने कहाँ से इतने सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाया करते थे, और फिल्म में बताया जाता था कि वो अपने सारे काम छोड़ छाड़ के हीरो हीरोइन के आगे पीछे बस डांस कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं जिंदगी के। और आपको एक खास बात बताऊं, इस गाने में माधुरी दीक्षित ने जो रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है ना, ये ड्रेस इतनी वायरल हुई थी ना, मतलब मेरे घर में मेरी दो कजिन्स ने ऑलरेडी ये ड्रेस बना ली थी। उसके बाद मैंने भी ये ड्रेस पहनी, एक्चुअली उन्हीं की ड्रेस मुझे पास हुई थी, लेकिन ये ड्रेस जब उन लोगों ने बनवाई थी ना, तो भाई माधुरी दीक्षित का पोस्ट कार्ड बाकायदा लेकर गए थे वो मास्टर साहब के पास, और बताया था उन्होंने कि मास्टर साहब ये वाली ड्रेस बना देना। याद है आपको नेट वाली वो रेड कलर की ड्रेस? वैसे माधुरी दीक्षित तो जो कुछ भी पहना करती थी बहुत अच्छी लगा करती थी यार, क्योंकि लेटर ऑन जब मैंने उस ड्रेस को पहनना शुरू किया ना, तो मुझे ऐसा लगता था कुछ ज्यादा नहीं हो गया। मगर एक बात बोलूं, ये गाना इज नेवर कुछ ज्यादा। ये गाना ना जितनी बार सुनो उतनी बार इस गाने से पहली मोहब्बत वाला प्यार हो जाता है। तो बस फिर यही गाना आपके लिए लगाती हुई मैं आपसे कहती हूँ, हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा आप मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अपना ख्याल रखिए एंड स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Saathire, thoda theher ja, abhi raaste mein.

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Jaru, only on.

पुरानी फिल्मों के रोमांटिक सीन्स में से ना एक सीन मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये सत्य भी सत्ता फिल्म से है, जब अमिताभ बच्चन साहब हेमा मालिनी जी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो इनको खास पसंद नहीं कर रही होती हैं, तो अमिताभ बच्चन इनके लिए फूलों का गुलदस्ता लाते हैं, इनके घर की बेल बजाते हैं, वो दरवाजा खोलती हैं, वो गुलदस्ता ऑफर करते हैं, वो थोड़ा गुस्से में दरवाजा बंद करती हैं, तो क्या होता है कि गुलदस्ते में से गुल फूल जो है वो दरवाजे में फंस के घर के अंदर रह जाते हैं, और दस्ता जो है खाली डंडियां कांटे जो हैं वो अमिताभ बच्चन के हाथ में रह जाते हैं। फिर हेमा मालिनी जी उन फूलों को देख के ऐसे थोड़ी पिघल जाती हैं और उन्हें अमिताभ बच्चन पे प्यार आ जाता है, और बैकग्राउंड में फीमेल वोकल्स हमिंग साउंड। यस, ये सीन इस फिल्म के बहुत ही खूबसूरत गाने में है जो हम अभी सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: बहुत कम उम्र में परेशानियों ने म्यूजिक कंपोजर जयदेव साहब का हाथ पकड़ लिया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। माँ बाप को कम उम्र में खो देना, घर की जिम्मेदारियां अपने ऊपर उठा लेना, खुद शादी नहीं करना, लेकिन एक चीज जिसका हाथ जयदेव साहब ने पकड़ के रखा वो था उनका संगीत। संगीत सीखने की धुन में वो अलग अलग शहरों में भटकते रहे, फाइनली लखनऊ पहुंचे अपने गुरु अली अकबर खान से संगीत सीखने। उन्हीं के साथ बॉम्बे भी गए। गुरु चेले दोनों ने नवकेतन फिल्म्स में काम करना शुरू किया, लेकिन बहुत जल्दी गुरु जी का दिल बॉम्बे नगरी से भर गया। वो वापस चले गए लेकिन जयदेव साहब वहीं रह गए। इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: नवकेतन में चूंकि मैं परमानेंट मुलाजिम था, तो चेतन आनंद साहब ने बर्मन दादा से पूछा कि दादा हमारे पास जयदेव है। उन्होंने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ जयदेव को अच्छी तरह से, तो क्या आप उसको हमारी फिल्म के लिए, सिर्फ हमारी फिल्म के लिए अपना असिस्टेंट एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि दादा के बहुत असिस्टेंट थे उस वक्त, हाँ मैं जयदेव को लूंगा। और बाद में धीरे धीरे मैं उनका चीफ असिस्टेंट बना। इसी बीच में मुझे अपनी फिल्म जोरुगा भाई, इंडिपेंडेंट फिल्म, किनारे किनारे, ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाब रही।
0: जयदेव साहब ने बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक क्रिएट किया, लेकिन सैडली उनकी मेजोरिटी ऑफ फिल्म्स चली नहीं, पर उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपको पता है बॉम्बे नगरी से जब उनका मोह भंग हो जाता था, वो हरिद्वार या ऋषिकेश चले जाते थे और वापस आकर फिर औसम म्यूजिक क्रिएट करते थे। उनकी तीन फिल्मों के म्यूजिक को नेशनल अवार्ड मिला है, रेशमा और शेरा, अनकही और गमन, जिसका ये ब्यूटीफुल सॉन्ग हम सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

चांदनी फिल्म से सिर्फ श्रीदेवी ही सेंसेशन नहीं बन गई थी, उनकी कॉस्ट्यूम्स, उनका फैशन, उनकी ड्रेसेस भी सेंसेशन बन गई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उनके वो वाइट चूड़ीदार कुर्ता कमीज लहरिया दुपट्टा, उनके शिफॉन की साड़ीज क्या पॉपुलर हुई थी भाई, खास करके उनके वो सूट। ऐसा ही कहा जाता था बाजार में चांदनी स्टाइल सूट दिखाना। इनफैक्ट आज भी ऐसा होता है कि कोई अगर पूरे सफेद कपड़ों में ड्रेस्ड है लड़की तो उसे बोला जाता है कि तुम तो बिल्कुल चांदनी बन गई भाई। ये होती है लेगेसी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

मुझे ये कहो

awesome hair!

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

नमक हराम फिल्म का ये गाना हमने सुना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये फिल्म देखो ना, असरानी साहब को एक सीन में जरूर देखना। वो कुछ होली का सीन होता है जहाँ ये भांग वांग पी लेते हैं, और वो भांग जो इनको चढ़ती है ना, वो जो सीन्स दिखाए गए हैं, वो कॉमेडी सीन्स जो दिखाए गए हैं, उसमें असरानी साहब की क्या परफॉर्मेंस है। मेरा ना बड़ा कुछ बताने का मन कर रहा है, लेकिन ऐसे स्पॉइलर जैसे हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखी फिल्म तो मजा खराब हो जाएगा आपके लिए। देखिए, लेकिन याद नहीं आ रहा तो दोबारा से देखो, बड़ी ही मजेदार कॉमेडी है वो। है पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हल्लो, ये बात तो मुझको पता ही नहीं थी। मिर्ची सुन रहे आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये बात कि रेखा की सिस्टर जिनका नाम राधा था, वो एक मॉडल थी और तमिल फिल्मों की एक्ट्रेस भी थी। इनफैक्ट उनको बॉबी फिल्म, जी वही निम्बल कपाड़िया ऋषि कपूर वाली बॉबी फिल्म, उसमें हीरोइन का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि फिल्मों में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था। एक्चुअली उनको मॉडलिंग ज्यादा पसंद थी और ये जगमग चकमक फिल्मी दुनिया वाली लाइफ इन्होंने काफी जल्दी छोड़ दी थी। अपने बचपन के दोस्त, जो बाद में जाके इनके बॉयफ्रेंड भी बने, उनसे शादी करके जाके ये यूएस में सेटल हो गई थी।
1: सही है भाई, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं।
0: इनको ये ग्लैमर चकाचौंध मिल रही थी, इनको नहीं चाहिए थी। जिनको नहीं मिलती उनको चाहिए रहती है, यही तो लफड़ा है जीवन का। जिसको जो मिलता है वो उसको चाहिए नहीं, जो उसको चाहिए वो उसको मिलता नहीं। फिलहाल मुझे चाहिए आपके चेहरे पे मुस्कान जो जाए कान तक, और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।

पुरानी फिल्मों की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फैशन स्टेटमेंट्स या इसे ट्रेंड सेटर भी बोल सकते हैं हम। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मैं बात कर रही हूँ 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी के गाने आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे में मुमताज जी ने जो साड़ी पहनी थी, वो गॉर्जियस ऑरेंज साड़ी जिसने ऐसे हड़कंप मचा दिया था फैशन इंडस्ट्री में उस टाइम। तब तक साड़ी को एज ए ट्रेडिशनल अटायर देखा जाता था, लेकिन जिस तरह से मुमताज जी ने पहनी, उसमें डांस किया, उसे कैरी किया, साड़ी को एक ग्लैमरस ट्रेंडी पार्टी वेयर के तौर पे भी देखा जाने लगा। अच्छा, इस साड़ी को डिजाइन और स्टाइल किया था भानु अथैया जी ने। उन्होंने स्पेशली ये प्री प्लीटेड साड़ी बनाई थी जिसके साइड में जिप लगी हुई थी। ये इस तरह से डिजाइन की गई थी ताकि मुमताज जी इसके कम्फर्टेबली डांस कर पाए। उसका वो गोल्डन बॉर्डर, उसका वो लंबा पल्लू, उफ तौबा, एंड वे मुमताज जी कैरीड इट, वाओ। इस तरह की साड़ी ड्रेपिंग के बाद ही उस टाइम के कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स या फैशन डिजाइनर्स ने साड़ी के साथ अलग एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन

0: चलिए अवतार फिल्म की बात करते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं नहीं, जेम्स कैमरन वाली अवतार नहीं, मैं तो 1983 की फिल्म अवतार की बात कर रही हूँ, जिसमें राजेश खन्ना अवतार किशन बनते हैं और उनका ये किरदार बहुत पॉपुलर हुआ था। किरदार क्या, फिल्म भी हिट हुई थी और इसका पता है क्या असर पड़ा था? क्योंकि इसका सब्जेक्ट वो था ना कि बच्चे माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, बूढ़े माँ बाप को। इंस्पिरेशन फॉर बागबान फिल्म एज वेल। तो ये फिल्म देखने के बाद बहुत से लोगों ने ना अपनी वसीयत बदल दी थी, जहाँ पर उन्होंने अपने घर जो है बच्चों के नाम कर दिए थे, वो वापस बच्चों के नाम से हटा के अपने नाम करवा लिए कि ये बच्चे भी हमारे साथ ना ऐसा कर दें जैसा कि इस फिल्म में किया गया।
1: इस फिल्म का ना गाना बड़ा सही था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी ने लिखा, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

ओए कितना क्यूट गाना कसौटी फिल्म का। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और ये गाना मेनली प्राण साहब पे पिक्चराइज्ड है। भाई प्राण साहब अपने उसूलों के इतने पक्के थे ना, उनकी एक फिल्म थी 1972 की बेईमान, जिसके लिए उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, लेकिन उन्होंने ये अवार्ड लेने से मना कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से उस साल बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड पाकीज़ा फिल्म को मिलना चाहिए था, जबकि उसकी जगह इन्हीं की ये जो फिल्म थी ना बेईमान, इसके म्यूजिक को बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला। ये बात प्राण साहब और इनफैक्ट बहुत से लोग उस टाइम पे, मैं आपको कहूँ, उनके गले नहीं उतरी थी, तो इन्होंने अपना अवार्ड भी लेने से मना कर दिया। होते हैं कुछ लोग, क्या राइट है क्या रॉन्ग है उसके बारे में काफी सीरियसली सोचते हैं और उसके लिए खड़े भी होते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

Mirchi, it's hot. Purani jeans with Charu, only on Mirchi.

0: किशोर कुमार की आवाज में ये जिंदगी जीवन लाइफ की फिलॉसफी वाले गाने ना, इनका एक अलग ही लेवल है। हेलो, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं क्या, ये वाला गाना हो गया एक पिया का घर फिल्म का जो हमने अभी सुना, ये जीवन है, फिर जीवन के हर मोड़ पे, वो आई थिंक कौन सी फिल्म का था, झूठा कहीं का आई थिंक, फिर एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, फिर रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, इम्तिहान फिल्म का, देन जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, और इन गानों का पप्पा गाना, वो गाना अब हम सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: जिंदगी

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3
0: मिर्ची,
1: इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन मिर्ची।

कैसा बद्दुआ देता हुआ गाना है ये अनामिका फिल्म का। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। अबे दिल टूटे आशिक के दिल से बद्दुआ तो निकलेगी यार, क्यों नहीं निकलेगी। अच्छा इसी बात पे हार्ट ब्रेक पे एक शायरी सुनो। हफीज जलंधरी नाम के शायर हैं, उनका ये शेर है, ओ दिल तोड़ के जाने वाले दिल की बात बताता जा, अब मैं दिल को क्या समझाऊं मुझको भी समझाता जा। वैसे मुझे ना हार्ट ब्रेक के गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन पता है कौन से वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं, जिन पे आप डांस कर पाओ, जैसे कि ये वाला जो हम सुनने वाले हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu इस नाम से मिल जाऊंगी। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची,
2: रेडियो मिर्ची के साथ।
3: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

टीना मुनीम, इनकी डेब्यू फिल्म थी 1978 की देश परदेश। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन इससे पहले इनकी डेब्यू फिल्म 1977 की दूसरा आदमी भी हो सकती थी, लेकिन नहीं हो पाई। तो हुआ कुछ यूँ था कि ऋषि कपूर ने टीना मुनीम को कहीं देखा था, और उस वक्त दूसरा आदमी फिल्म की कास्टिंग चल रही थी, तो उन्होंने यश चोपड़ा साहब जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे उनको टीना मुनीम का नाम रेकमेंड किया। टीना मुनीम स्क्रीन टेस्ट के लिए आई, लेकिन उस टाइम ना तो ऋषि कपूर मौजूद थे ना यश चोपड़ा साहब। यश चोपड़ा साहब की टीम के कुछ मेंबर्स मौजूद थे, कुछ टेक्नीशियंस थे, उन्होंने स्क्रीन टेस्ट वगैरह लिया। वहां पर कुछ बात हुई जो टीना मुनीम को अच्छी नहीं लगी, और इस वजह से दूसरा आदमी फिल्म में उनका जो रोल है वो कुछ फाइनल नहीं हो पाया, एंड देन उस रोल के लिए नीतू सिंह को साइन किया गया था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और सुनेंगे इसी फिल्म का गाना जो है क्या बात क्या बात क्या बात। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

Mitchie. It's hot. Purani Jeans. With Charu. Only on Mirchi.

1971 की फिल्म मेला का ये गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में दोनों खान भाई थे, फिरोज खान संजय खान, और दोनों ने फिल्म मेकर को एक कॉम्बो डील दी थी कि आप हम दोनों को साइन कर लो तो पैसे कम कर देंगे। नहीं मतलब ऐसा कुछ हुआ था, बट फिल्म तो फ्लॉप हो गई थी। वैसे 90s में भी एक मेला नाम की फिल्म आई थी जिसमें दो खान भाई थे, आमिर खान फैजल खान, ये भी बुरी तरह पिट गई थी, वो तो बहुत ही बड़ा डिजास्टर थी। तो फिल्म बनाने वालों को ये लेसन लेना चाहिए कि जब भी आप मेला नाम से फिल्म बनाए तो उसमें दो भाइयों को साइन ना करें। खैर कमिंग बैक टू पुरानी फिल्म, 1970 की एक और डिजास्टर फिल्म थी इश्क पर जोर नहीं, लेकिन इसका म्यूजिक क्या चला था, और इसका ये गाना कंपोज्ड बाय एसडी बर्मन, रिटन बाय आनंद बख्शी, संग बाय लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी। रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई बजा।

Mirchi. It's hot.